रामदास महाराज गुरसिखां दे हिरदे विच नाम दे दीवे बन के बह गए। जिवें किसे घर दे अंदर हनेरा हुंदा है, दीपक आदक जगा दईए ते चानण हो जांदा है। इदां जिन्हां गुरसिखां दे हिरदे विच अग्ञान दा हनेरा है, धन धन

पातशाह दा अपना संघासन लग्या सी, उथों जेड़े गुरसिख ने थोड़े पासे पासे कर दिते ते इन्हां नूं थां दे दित्ती है, भाई बैठ जावो। महाराज जानदे सन के हिरदे अंदर द्वैष भावना लै करके

जाचना विसर ना सास गिरास जो तुद भावै सो भला तेरे भाणे कारज रास सुख सागर प्रीतम मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे।

0: संबंध कोई बहुत उच्चा नहीं, पर गुरु दे विचारां नाल अपने विचार जोड़ लैण, गुरु दे मन नाल अपना मन जोड़ लेना, तो दो दिलां दे जुड़दियां, दो विचारां दे जुड़दियां प्यार दा जन्म हुंदा। जिस दिन दो विचार एक हो जांदे न, प्यार पैदा हुंदा, उत्थे स्नेह दा जन्म हो जांदा। प्रेम ते स्नेह एक बहुत वड्डी तृप्ति दे जांदी है। साहिब कहिंदे ने, जिन्हें चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आधाए। प्रेम दे नाल तृप्ति मिलती है, लेकिन परम आनंद परम प्रसन्नता उदों ही मनुख नूं मिलती है जद आत्मा दा परमात्मा नाल मेल होवे, आत्मा दा परमात्मा नाल मिलन होवे। तो साहिब दी बाणी दा इह फरमान, प्रभु चिंतन दे नाल मनुख दी झोली चार पदार्थां नाल भर जांदी है, उन्हों धन भी मिल जांदा है, कामना दी पूर्ति भी हो जांदी है। प्रभु चिंतन दे नाल धार्मिक तौर ते जो नाम दा रस आनंद है वह भी झोली च पै जांदा है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गुरु अर्जन देव जी महाराज का फरमान, चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे। ए बंदे, जे तेनू चार पदार्थ चाहिए ने, इन्हां पदार्थां दे नाल जे तू अपनी झोली भरना चाहना है तो सतसंग दे च आ, गुरु की शरण दे च आ। गुरु की शरण सतसंग दा रस और गुरमत दियां विचारां तेरी इस झोली नूं चार पदार्थां नाल भर देनगियां। ते इन्हां पदार्थां तो कोई होर उच्चा पदार्थ है नहीं। जिस वक्त धन ते कामना दी पूर्ति हो जाए, संसार तो मनुख उच्चा उठता है, सब कुछ मिल गया। ते जिस दिन धर्म ते मोक्ष मनुख नूं मिल गया, उस दिन ते बंदा उस सिंघासन ते जा बैठता है जिस सिंघासन ते परमात्मा आप बैठा है। भगत कबीर कहने, अब तो जाए चढ़े सिंघासन मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं कोई न सके पहचान।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

कर्ता पुरुख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनि सैभं गुरुप्रसाद। परिपूर्ण परमात्मा ने अपनी प्रकृति दे जीवन विच एक अटल नियम रखे है, हर जीवन नो तीन पड़ावां दे चों लंघना पैंदा है। चाहे वो पत्थरां दा जीवन है, चाहे बनस्पति, चाहे वो पशुआं दा जीवन है, चाहे पंछियां दा, चाहे वो मनुखां दा जीवन है। क्योंकि इस प्राकृतिक मंडल विच मनुख जीवन दी शिखर है, जिंदगी दी बुलंदी है। इसनों धरती दा सरदार आखे है गुरु नानक देव जी महाराज ने, अवर जौन तेरी पनहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी। इसनों अशरफुल मखलूकात आखे है, अगर जीवन नू नापांगे तो फिर इस प्राकृतिक मंडल विच मनुख तो सब कुछ थल्ले ही है, पिछे ही है। पिछे लई शब्द है संस्कृत देच पाश, जो पिछे रह गए, पाश देच रह गए पशु। कौन पशु? जो पाश देच रह गए, पिछे रह गए। तो मनुख तो पिछे है सारा पशु जगत, और इस पास जगत देच, इस पशु जगत देच चौपाए जानवर आ जाते ने, पंछी आ जाते ने, वनस्पति आ जाती है, हथा कि कुछ जड़ जीवन पत्थर भी आ जाते ने। क्योंकि गुरबाणी ने इन्हों भी यौन मने है, कई जन्म सैल गिर करया, कई जन्म गर्भ में खिरया। अनंत जन्मा तक, अनंत काल तक ऐ मनुख तू पत्थर भी रहे है, तू पत्थर दी जिंदगी भी पौगी है। अचेत सुन, तो जितना इस पृथ्वी दे जीवन है मनुख तो पिछांदा या मनुख, ये तीन तरह दे पड़ाव तो लंघदा है। और इन्हां तीन पड़ावां नू नाम दिता गया है बाल अवस्था, फिर जवान अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था। चाहे वनस्पति है, चाहे पशु ने, चाहे पक्षी ने, चाहे मनुख ने, इन्हां ते झात मारांगे दिस पैणगे कुछ ऐसे जो बिरध ने, तर्जे जिंदगी दसेगी बिरध ने, तर्जे जिंदगी दस देगी युवक ने, जवान ने, आकार विचार ही दस देंगे बच्चा है, बालक है। ये बचपना जवानी बुढ़ेपा सिर्फ मनुखी ही तलते ही नहीं, पंछियां दे छवी ने, पशुआं दे छवी ने, पक्षियां दे छवी ने, और पत्थरां दे छवी ने, ऐसे पहाड़ ने बुढ़े हो गए, जैसे सतपुड़े नु कहंदे ने बिरध हो गया। ऐसे भी पहाड़ ने जो जवान ने, जैसे कि हिमालिया, पर ऐसे भी टीले अजे खड़े ने, उसर रहे ने, उच्चे हो रहे, जिन्हां नु कह के देख के ये आखना पैंदा है इते बच्चे ने। कुछ अजे प्रकृति दे गर्भ विच भी ने उभरणगे, समा लगेगा। लेकिन गल ते अशरफुल मखलूकात मनुख दी है, जो धरती दा सरदार है, गल ते इस दी करनी है। यही एक जीव है जो एक तरह दी जिंदगी नहीं जीवंदा, कई तरह दा जीवन जीवंदा है। इसका सामाजिक जीवन है, इसका कुछ राजनैतिक जीवन है, इसका कुछ आध्यात्मिक जीवन है।
पूरन पुरख उसनों कहिंदे ने जो समाजिक तल ते पूरा है, राजनैतिक तल ते पूरा है, धार्मिक तल ते पूरा है। बड़ा सोहना शब्द है गुरबाणी दा, पूरन पुरख, मुकम्मल इंसान, पूरन पुरख। वो पूरा है जिसका समाजिक जीवन पूरा है, वो पूरा है जिसकी राजनीतिक सोचनी पूरी है, वो पूरन है जो धार्मिक तल से पूरा है। ये असी किस तरह नापांगे कि इना जिंदगी देच भी, इस तरह की जिंदगी देच भी समाज, राजनीति ते धर्म देच भी बचपना है, जवानी है, वृद्धावस्था है, बुजुर्गी है। शरीरक बचपना अखां नाल देखिया जांदा है, समाजिक बचपना देखना है तो दिमाग नाल देखना पड़ेगा, अंदर दी अख नाल देखना पड़ेगा। शरीरक जवानी देखनी है अखां नाल दिखाई दे जांदी है, जवान है। पर किसी दा राजनैतिक तल ते बालग होना देखना है तो फिर अंदर दी अख चाहिदी है, अंदर दी सोच चाहिदी है। कोई धार्मिक तल ते पूरा है इते वेखण वास्ते पूरी अख चाहिदी है अंदर दी, पर कोई शरीरक तल ते बुजुर्ग है, पूरा है, बुढ़ा हो गया है, इते अखां दा विषय है, अखां ही दस देंदियां ने ये बुढ़ा है, लेकिन अख ए नहीं दस सकती कि धार्मिक तल ते किथे खड़ा है, अख ए भी नहीं दस सकती कि समाजिक तल ते किथे खड़ा है। अखां ए भी दसण विच असमर्थ ने कि ए राजनीतिक तल ते किथे खड़ा है, किथे अंदर दी अग खोलनी पेगी। पर अक्सर एक बदकिस्मती रहिंदी है, अंदर दी अख अक्सर मनुखां दी बंद ही रहिंदी है। बाहर दीआं अखां ए दो ने, अंदर दी अख वो एक है, और वो मनुख दे अंतिशकरण नूं वेख सकदी है, वो प्रकृति दे अंदर झाती मार सकदी है, वो अख बहुत गहरा वेख सकदी है। ये अखां इतनियां गहराई तक नहीं जा सकदियां, पर देखण दे चाहुंदा है एक दिन ये दो अखां भी हमेशा लई बंद हो गईआं, वो अख खुली ना। दोहे दिवरी मलक बहठा आए, गढ़ लीता घट लुटेया, दीवड़े गया बुझाए। बाबा फरीद कहंदे ने आया एक दिन मौत दा मलक, अपने नाल ऐसा तूफान ले आया, दो अखियां दे दीवे बुझा गया। मैं है ते कोशिश करदा रहा अंदर दे दीवे च तेल पाण दी, वट लबण दी, जलाण दी कोशिश करदा रहा, ओ ते जल ना सकया, ए दो बुझ गए। जीवन अंधकारमई हो गया, जीवन मस्या दी रात बन के रह गया, जबकि जिंदगी मिली सी नूर होण लई, प्रकाश होण लई, चानण होण लई, इते अंधकार बन के रह गए। ओ जद तीसरी अख खुल जाए तो ऐसे पुरुष नु कह दिता जांदा है त्रैनयन, तीन नेत्रा वाला, त्रिलोचन, लोचन अखा नु कहंदे ने, त्रिलोचन इहदे कुल तीन नेत्र ने, इहदे कुल तीन अखा ने। अक्सर हर मनुख नु असी कह सकदे हां दोए लोचन त्रिलोचन जो हो गया उते संत है, उते भगत है, उते धार्मिक तल ते बुजुर्ग है। त्रिलोचन धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 24 अवतारां दी कथा दे शिव जी नु कहिंदे ने त्रैनयनम बरी पुत्र का ताहे को प्यो त्रैनयनम, तीन नेत्रा वाला। कहिंदे ने
ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜਨਮੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਓ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਣ ਖੜੀ ਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਜਦ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਖੋਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਾਕਈ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਤਿੰਨ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਆਸ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਖੁੱਲੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ। ਤਿੰਨ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਟੰਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਅਜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਅਸਮਰਥ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਿਖਰਮਈ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੋ ਖੈਰ, ਜੈਸੇ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਦਾ ਬਚਪਨਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਖਤਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਪਕਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚਾ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਜੋ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਤੋੜਦਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਜੋੜਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਤੋੜਦਾ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਬਣਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਮਿਟਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਿਟਾਉਣਾ, ਖੇਡ। ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨੇ ਨੇ, ਤੋੜਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਦਾ ਬਚਪਨਾ। ਸਵੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਚਪਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਬਚਪਨਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੜੀ, ਤੋੜ ਫੋੜ ਤੇ। ਇਹ ਜੋੜਿਆ, ਉਹ ਤੋੜਿਆ, ਉਹ ਤੋੜਿਆ, ਇਹ ਜੋੜਿਆ, ਇਸ ਜੋੜ ਤੋੜ ਤੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਬਚਪਨਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਬਚਪਨਾ, ਜੋ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਗੁੱਡੀ ਗੁੱਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਵਿਅਰਥ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਖੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਬਚਪਨਾ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਖਿਡੌਣੇ ਵੀ ਗੁੱਡੇ ਤੇ ਗੁੱਡੇ ਦੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਥੇ ਤੇ ਲੱਖ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਣਾ, ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲੌਣਾ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਰਾਮ ਖਿਲੌਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਿਲੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਖਿਲੌਣਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਕੋਈ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਮ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਮ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਿਲੌਣਾ, ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਪਰਚਾਵਾ, ਸਿਰਫ ਮਨ ਦਾ ਪਰਚਾਵਾ। ਜੈਸੇ ਬੱਚਾ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਦਾ ਪਰਚਾਵਾ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸਦੇ ਪਰਚਾਵੇ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਿਡੌਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਮੂਲੀ ਖਿਡੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਖਿਡੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਡੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ,
वासना बड़ी अपार तो खिडौना भी कोई बहुत वड्डा चाहिदा है। तो राम खिडौना है, खेडना है। ये तीन तरह की जिंदगी रेच तीन तरह के पड़ाव मिलते ने, बचपना, जवानी, वृद्धावस्था। समाजिक जीवन रेच, राजनीतिक जीवन रेच, धार्मिक जीवन रेच। चूंकि गल करिए धर्म दी, ते धर्म ही एक ऐसा विषय है जिन्हों समझ लईए ते सब कुछ समझ लिया, जिन्हू नहीं समझे ते कुछ भी नहीं समझे। महाराज दी बाणी दा फरमान बड़ा सुंदर, सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार न छाना रे। धर्म नू जानिया नहीं, परमात्मा नू जानिया नहीं, जानकारी बहुत कठी कीती है पर कहिंदा मैं ए जानदा, मैं ए जानदा, मैं ओ जानदा, पर सेकंड तो कुछ भी नहीं जानदा, अनजान है। की होया तू वनस्पति शास्त्री बन गया, की होया जे तू अर्थशास्त्री बन गया, की होया जे तेनो शरीर दी कुछ समझ पै गई है, वैद बन गया, की होया जे तेनो कोई थोड़ा जा फिलसफा घोटना आंदा है, अजे जीवन दी मूल सता दा तेनो कोई बोध नहीं, अनजान। बहुत सारियां दा ज्ञान अनजानपने दी बुनियाद ते खड़ा होंदा है। इस नूं इंज कहिए, बहुत सारियां दा महान ज्ञान महान अज्ञान ते खड़ा होंदा है। आधारशिला अज्ञान है, उपर ज्ञान खड़ा कीता है, तो वो सारी जानकारी बेमैनी हो जाती है जितने चिर तक धर्म दा ज्ञान ना होवे। कहिंदे ने एथिन दा प्रसिद्ध संत सुकरात बच्चियां नाल खेड़दा खेड़दा बचपन दियां गल्लां अक्सर कहिंदा सी, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैं नहीं जानदा, मैं सब कुछ जानदा, मैनू सब कुछ बोध है, मैनू सब कुछ दा पता है। पर सुकरात कहिंदे ने जद मैं जवान होया तो छोटे आंदे आ बच्चियां जो मैं बोल बोलदा सी ओ बोल जद मेरे सामने आंदे सन तो शर्म नाल अखां झुक जांदियां सन। मैनू जवाना दी महफिल विच बैठ के कहना पिया कुछ ऐसा भी है जो मैं नहीं जानदा। और यही महापुरुष कहिंदे अज मैं बुढ़ा हो गया, एक गल मैं दावे नाल कहना और सही ते सच्ची, मैं कुछ भी नहीं जानदा, मैनू कुछ भी नहीं पता। जिस जिस नूं भी मैं ज्ञान आखिया उते अज्ञान साबित होया। धर्म नूं जाने बिना कुछ भी नहीं जानिया, प्रभु नूं जाने बिना कुछ भी नहीं जानिया। सारी जानकारी रेत दा ढेर साबित हो जांदी है अगर परमात्मा नूं नहीं जानिया, ईश्वर नूं नहीं जानिया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने धर्म दियां इस अवस्थावां नूं जिस ढंग नाल खोलिया है, ओ मैं उन्हां दे शब्द दी विचार नूं पेश कर रहा। भुज बलबीर ब्रह्म सुख सागर, गर परत गह लेहो अंगुरिया, सर्वन न सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटुत पिंगुरिया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, हे प्रभु है ते सही मेरे कोल धार्मिक जीवन, पर ए जीवन ऐसा है जैसे किसे मां दी गोद दे चुसदा बच्चा, एक मासूम बच्चा, और उस बच्चे नो ए भी नहीं पता है मेरी मां है जिसने मेनू गोद च लिया है, अज जमे है, एक दिन दा है, दस दिन दा है, पंद्रह दिन दा है, बैठा ते मां दी गोद च है, सो रहा है मां दी गोद च, लेकिन गोदी दा कोई ज्ञान नहीं, कुख दा कोई ज्ञान नहीं। पिला रही है, रिजक दे रही है दुध मां, पर रोजी देहिंद दा इसनु कोई बोध नहीं है। परचा रही है, खिड़ा रही है अपने हथा नाल,
पर ए हथ की ने कुछ भी ज्ञान नहीं, कुछ भी बोध नहीं। अगर इस हिसाब नाल देखी है बहुत सारिया नू कोई बोध नहीं, असी किथे हां, किस दे हथां दे चां, किस दी गोद दे चां, इतना भी बोध नहीं है। बालक बुद्ध अचेत, बिल्कुल बचपना। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, हे प्रभु धर्म दी दुनिया च मेरा जन्म ते हो गया, पर जन्म ऐसा जैसे बच्चा मां दी गोद च है, कुछ भी बोध नहीं, मुंह दी जबान है बोल नहीं सकता, हाथ है गे ने कुछ भी नहीं कर सकता, पैर है गे ने चल नहीं सकता, दिमाग है सोच नहीं सकता, कान है गे ने नहीं सुन सकता। इस बच्चे नु कुछ भी नहीं पता सामने जो गुफ्तगू हो रही है की है, दो बंदे जो कुछ बोल रहे ने की है, माता पिता जो कुछ बोल रहे ने की है, इन्हु कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, इन्हु कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। जन्म होया तो बहुत सारे ना धार्मिक दुनिया दे जन्म ते हो जाता है, जन्म हो गया है, ये ऐसी किस तरह वेखांगे, मंदिर जान लग पे है, गुरुद्वारे जान लग पे है, पूजा पाठ करन लग पे है, बाणी पढ़न लग पे है, कथा कीर्तन सुनन लग पे है, अमृत वेले उठन लग पे है, कर्म कांड दे प्रवृत्त हो गया है। लेकिन इस सब कुछ की है, कुछ भी बोध नहीं, कुछ भी पता नहीं, इस तरह हो रहा है जैसे गोद देच बच्चा है, दूध पी रहे है, खिड़ाया जा रहा है हथां देच, सुलाया जा रहा है गोद देच, पर उसकी अवस्था जो सब कुछ अचेतमयी चल रहा है, दूध पीना भी अचेतमयी चल रहा है, हथां देच खेड़ना भी अचेतमयी चल रहा है, धार्मिक कर्म सारे दे सारे अचेत ते खड़े ने, सचेत नहीं है, सावधान नहीं है। तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, हे प्रभु जन्म हो जाना ही काफी नहीं, जीवन भी ते मिलना चाहिदा है। बच्चे दा जन्म हो गया है, इस कुल कोई सामाजिक जीवन नहीं, बच्चे दा जन्म हो गया है, एदे कुल कोई राजनीतिक जीवन नहीं, बच्चे दा जन्म हो गया है, एदे कुल कोई धार्मिक जीवन नहीं, कुछ भी नहीं है। जन्म होया है लेकिन जिसनु कहने ने जिंदगी ये नहीं है, जिसनु कहने ने जीवन ये नहीं है, ये तो अजी विकसित हो गया, जिस अज समा हो लगेगा, लेकिन ऐसा देखने दे चाया है, विकास हो जाता है सामाजिक जीवन का, रिश्तियां भी समझ आ जाती है, ये मेरी मां है, ये मेरा पिता है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भरा है, अखां खुलदियां जा रही ने, समाजिक तल ते प्रौढ़ होंदा जा रहा है, जवान होंदा जा रहा है, रिश्तियां दी सोच समझ वधदी जा रही है, ये मेरा मित्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पड़ोसी है, लेकिन ये मेरा परमात्मा है, धार्मिक तौर ते ते अजे भी अनजान रह जांदा है, अजे भी मासूम रह जांदा है, अजे भी जो है बच्चा रह जांदा है। एक दिन राजनैतिक तल ते भी प्रौढ़ हो जांदा है, सियाणा हो जांदा है, और राजनैतिक लोगां दीआं गल्लां दे उत्ते उसका विश्वास नहीं बनता। अज तो 2500 साल पहले एथन दे प्रसिद्ध संत सुकरात ने कहा सी, और बड़े कीमती उसके पोल ने, अज ते सारी दुनिया पढ़ रही है, राजनैतिक ते अपराधी इक्को ही ज़हनियत दे मालिक होंदे ने, इक्को ही मनोविरति दे मालिक होंदे ने, फर्क सिर्फ इतना है कि जिथे छोटा अपराध है अपराधी है, जिथे वड्डा अपराध है राजनैतिक है। सुकरात दे ए बोल कहना पेगा अमर बोल ने, और इस तरह दे पुरुष वक्ती बोल बोलते भी नहीं, अमर बोल बोलते ने, उन्हां दा संदेश वक्ती संदेश नहीं आउंदा, अमर संदेश आउंदा, और उन्हां दे संदेश विच कदी मुर्दमे नहीं आउंदी, क्योंकि अमर बोल होंदे ने, सदीवी बोल होंदे ने, और बहुत वड्डी जो है सच्चाई है। जद भी कोई राजनीति नूं समझण वाला हो जांदा है,
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹਵਾ ਦੇ ਗੁਬਾਰੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਲ ਤੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਧ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਬੋਧ ਦੇ ਚ ਜੀਵਦਿਆਂ ਜੀਵਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਬੈਠਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਆਪਣੀ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਮੰਦਰ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।

हाथ पैर मैले हो गए ने, बस्तर मैले हो गए ने, धोल है तर। कारण मैल चंगी नहीं लगती, समाज नु चंगी नहीं लगती, और मैल आपे ही पहनती है, आपे ही पहनती है। और मैल समाज नु चंगी नहीं लगती, मैल ढकनी पैंदी है, फुलां नु ढकण दी लोड़ नहीं। पेशान दे लिबास हर किरां ऐबे दी, बेऐबा रा लिबास उरिया नहीं दात। जो मनुख छुपांदा है, ढकदा है, सरमद कहंदे ने वो पाप होवेगा, गलत होवेगा, सही नहीं होवेगा। सही नु छुपाण दी लोड़ नहीं, गुणा नु छुपाण दी लोड़ नहीं, औगुण नु मनुख छुपांदा है, गलत नु छुपांदा है, पाप नु छुपांदा है, दूजे नु ना पता चले। जो छुपाया जा रहा है मैल है, मैल नु ढकना पैंदा है, गंदगी नु ढकना पैंदा है। चाहे वह स्थूल रूप विच गंदगी है, चाहे वह सूक्ष्म रूप विच है, चाहे बाहर गंद पई है ढकनी पैंदी है, चाहे मन विच पै गई है छुपानी पैंदी है। जो छुपाया है वो गंद है, जो छुपाया है वो मैल है, जो छुपाया है वो सही नहीं है। पेशान दे लिबास हर किरां ऐबे दी, सरमद कहिंदा है मनुख ने इन्हां कपड़ियां दे च बहुत कुछ छुपाया है, निरा तन नहीं छुपाया, पता नहीं कितने गुनाह छुपाए ने, कितने पाप छुपाए ने। जिसनु छुपाना है वो पाप है, जिसनु ढकना है वो मैल है, सही नहीं है। तो मैं अर्ज करा हाथ दे उते, पैरां ते, कपड़ियां ते जो मैल पै जाती है, हाथ भर जान, पैर भर जान, अर्थ थोड़े सामने रख दी है, भावें कल खुलासा किया सी, पड़ी है हाथ पैर तन दे, पानी दोते उतरस खे, खे नाल किधरे हाथ भर जान, मैल नाल किधरे पैर भर जान, मुंह मथा भर जाए, कपड़े भर जाए। पानी धोते उतरस पाया, पानी खे गई, पैर साफ हो गए, हाथ साफ हो गए, मुंह मथा साफ हो गए, पर खे दे नाल नाल जरा होर गहरी मैल पै गई, मौत पलीती कपड़ जी, किधरे मल मूत्र नाल कपड़ा मैला हो जाए, मल नाल शरीर दी मैल नाल कपड़े मैले हो जाए। दे साबुन लईए ओह धोवे, तो पानी दे नाल नाल फिर साबण, उस साबण दे देंदे हां पानी दे नाल, उस मल नु शरीर दी मल नु कपड़े चो कढ़ देंदे। पर भरिए मत पापां के संग, अगर मन पाप नाल भर जाए, सोचनी पाप नाल भर जाए, चितवनी पाप नाल भर जाए। दास ने कल अर्ज की थी सी, विद्वाना ने पाप कुल दस मने, चूंकि जीवन भी भर दुराए जाते ने, रिपीट किए जाते ने, तो जिंदगी दे चे हजारां लखां आनंद बन जाते हैं। कई दफा मनुख इस जीवन दे इना पापा नू धोण दे असमर्थ होंदा है, तो पाप नाल चलते हैं, अगले जन्म दे चलते हैं, तो पिछले भी पाप ते नवे होर छोड़े। इस तरह पाप जन्म दर जन्म वध दे जाते, वध दे जाते, वध दे जाते।
ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, 10 ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਚੋਂ 4 ਪਾਪ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਵਿਅਰਥ ਬੋਲਣਾ, ਮਿਥਿਆ ਬੋਲਣਾ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ 4 ਪਾਪ ਰਸਨਾ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਮਨ ਕਰਦਾ। 3 ਪਾਪ ਮਨ ਖੁਦ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਪਾਪ। ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਲ ਬਾਰੇ, ਦੂਸਰਾ ਪਾਪ। ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਵਰੂ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਪਾਪ। ਇਹ 3 ਪਾਪ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਪਾਪ ਹੀ ਤਨ ਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਤਨ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। 3 ਪਾਪ ਹੀ ਤਨ ਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਖੋ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਖੋ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਲੁੱਟ ਲੈਣੀ, ਇਹ 10 ਪਾਪ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਤ ਇਸ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੁਲੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਪ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਧੁਲਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਐਸੀਆਂ ਮਨੋਤਾਂ ਨੇ, ਐਸੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸੂਰਿਯ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਪ ਧੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਘੀ ਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਾਪ ਧੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁੰਭੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਧੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁੰਭ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਧੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੰਭ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलदा, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: नानक कहूं नसी जई बिरनावै पत जाए अष्टपदी।
1: दस वसूले पाछे पावै
0: एक वस्त कारण बिखो टकवावै
1: एक भीना दे दस पी हिर ले
0: तो मूड़ा को कहां करे
1: जिस ठाकुर से नाही चारा
0: आको कीजे सद नमस्कार
1: जाके मन लगा प्रमीठा
0: सर्व सुखता हु मन बुठा
1: जिस जन अपना हुक्म मनाया
0: सर्व सुख नानक तिन पाया
1: अगंत शाह अपनी दे रास
0: आत पीत बरत अनंत उलास
1: अपनी ईमान कश बहुर शाह होले
0: अज्ञानी मन रोस करे
1: अपनी प्रतीत आप ही गोवे
0: और उसका विश्वास न हो
1: बस्ते सागर रखै
0: की आज्ञा मन नै मथ
1: उसते चौगन करे निहाल
0: नानक साहिब सदा दयाल
1: नानक भात माया के हित
0: सरपर होवत जान अनेत
1: बिन की छाया स्यो रंग लावै
0: ओ बिन सह ओ मन पछतावै
1: जो दिसै सो चालन हार
0: लपटरे उतै अंधे अंधार
1: घटाऊ स्यो जो लावै ने
0: ताको हाथ न आवै के
1: मन हर के नाम की प्रिय सुखदाई
0: कर कृपा नानक आप लै लाई
1: मिथ्या तन धन कुटुंब सुपाया
0: मिथ्या होमै ममता माया
1: मिथ्या राज जोगन धन माल
0: मिथ्या काम क्रोध विकराल
1: मिथ्या रथ हस्ती असु वस्त्रा
0: मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता
1: मिथ्या ध्रो मोह अभिमान
0: मिथ्या आप से ऊपर कर्त गुमान
1: सिर भक्त साध की शरण
0: नानक जप जप जीवै हर के चरण
1: मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनहे
0: मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरे
1: मिथ्या नेत्र पेखत पात्रिया रूपाद
0: मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद
1: मिथ्या जन्म पर विकार कुता वहे
0: मिथ्या मन पर लोभ लबावे
1: मिथ्या तन ही पर उपकारा
0: मिथ्या बास लेत बिकारा
1: बेबूजे मिथ्या सब भये
0: सफल दे नानक हर हर नाम लये
1: बिरथी साख की आरजा
0: साच बिना कह होत सुचा
1: बिरथा नाम बिना तर अंध
0: मुखे आवतता कह दुर्गंध
1: बिर सिमरन दिन रैन बिरथा विहाए
0: एक बिना ज्यो खेती जाए
1: गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम
0: कृपन के निरार्थ दाम
1: धन तन तेज अन दे कट बस्यो हर नाउ
0: नानक ताके बल बल जाओ
1: रहते अवर कश अवर कमावत
0: मन ही प्रीत मुखों गंड लावत
1: जान नहार प्रभु प्रवीन
0: बाहर पीक न काहू भीन
1: अवर उपदेश आप न करे
0: आवत जावत जन मैं मरे
1: जिसके अंतर बसे प्रभाप
0: जिसकी सीख तरह संसार
1: जो तुम भाने तिन प्रभ जाता
0: नानक निजन चरण पराता
1: करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने
0: अपना किया आपे मन
1: आपे आप आप करत नबेरा
0: किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा
1: पाप सियान सकल ते रहत
0: सब कछ जाने आत्म की राहत
1: जिस भावे तिस लये लड़ लाए
0: शांत नंतर रहा समाए
1: सो सेवक जिस कृपा करी
0: निमक निमक जप

0: अष्टपदी
1: जिसके अंतर राज अभिमान
0: सो नरकपाति होवत स्वान
1: जो जाने मैं जो बनवंत
0: सो होवत विष्टा का जंत
1: आप उसको कर्मवंत कहावे
0: जन्म मरे भोजन परमावे
1: धन भूम का जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
1: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
0: नान की है मुक्तिया गैस पावे
1: धनवंता हुए कर गर्भावे
0: तरण समान का संग न जावे
1: बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस
0: और भीतरता का हुए विनाश
1: सब के आप जाने बलवंत
0: में हुए जाए पसमंत
1: सेना बदे आप अहंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जहाँ का मिटे अभिमान
0: सोजन नानक दरगाह परवान
1: कोट कर्म करे हों तारी
0: शरम पावे सकले प्रथारे
1: अनक तपस्या करे अहंकार
0: नर्क स्वर्ग फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दरगाह को कैसे गवे
1: आप को जो भला कहावे
0: इसे भलाई निकट में आवे
1: सर की रेन जहाँ का मन होए
0: कौन नानक ताकि निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझते कश होए
0: जब इस को सुख नाही कोई
1: जब यह जाने मैं किस करता
0: तब लग गर्भ जोन में फिरता
1: जब तारे को बैरी मीत
0: तब लग नेचर नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्मराय देश जाए
1: तब कृपा से बंधन टूटे
0: गुरु पर साधना अनक हो छूटे
1: सहस कटे लग कोट तावे
0: कितन आवे माया पाछे पावे
1: अनक भोग विखिया के करे
0: नेत्र तावे खप खप मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: सपन मनोरथ फिर थे सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: दुर्भागी किसे प्राप्त होए
1: कर्ण करावन आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: कर्ण करावन करने हार
0: इसके हाथ कहाँ विचार
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप प्रभ सोए
1: जो किस पीनो सो अपने रंग
0: तब ते दूर सब हूँ कै संग
1: दूजा देख करे विवेक
0: आप एका पै अनेक
1: मरे न पिनसै आवै न जाए
0: नानक सब ही रह समाए
1: आप उपदेशै समझे आप
0: आपे रचिया सबके साथ
1: आप तीनों अपन विस्तार
0: सब कुछ उसका हो करने हार
1: पोस्ते पेन का हो किश होए
0: आंत नंतर एक सोए
1: अपने चलित आप करने हार
0: गौत करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभ स्वामी
0: गुर प्रसाद के न बखियानी
1: सच सच सत सब कीना
0: कोट मदैक ने विरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: कटकट सुनि सर उन बखियानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
0: नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक
1: संत शरण जो जन पर सो जन उदर नहार
0: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
1: संत का दुखन आर जा कटे
0: संत का दुखन जमते नहीं छुटे
1: संत का दुखन सुख सब जाए
0: संत का दुखन नरक में पाए
1: संत का दुखन मत हो ही मलीन
0: संत का दुखन शोभा देहीन
1: संत के हथे को रखे न कोई
0: संत का दुखन थान भ्रष्ट हो
1: संत कृपाल कृपा जे करे
0: नानक संत संग निंदक भीतर
1: संत के दुखन ते मुख पवे
0: संतन के दुखन काग ज्यो लवे
1: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
0: संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए
1: संतन के दुखन तृष्णा मह जले
0: संत के दुखन सब को छले
1: संत के दुखन तेज सब जाए
0: संत के दुखन नीच निचाए
1: संत दुखी का थाउ को नाही
0: नानक संत पावे ता ए पी गत पाए
1: संत का निंदक महा अतताई
0: संत का निंदक खन टिकन न पाए
1: संत का निंदक महा हत्यारा
0: संत का निंदक परमेश्वर मारा
1: संत का निंदक राज ते हीन
0: संत का निंदक दुखिया अरदीन
1: संत के निंदक को सर्व रोग
0: संत के निंदक को सदा बिजो
1: संत के निंदा दोख मैं दोख
0: नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख
1: संत का दुखी सदा पवित
0: संत का दुखी किसे का नहीं मित
1: संत के दुखी को डान लग गए
0: संत के दुखी को सब त्याग गए
1: संत का दुखी महा अहंकारी
0: संत का दुखी सदा बेकारी
1: संत का दुखी जन्म मरे
0: संत की दुख न सुख ते तरे
1: संत के दुखी को ना ही ठाऊं
0: नानक संत पावे ता लय मिलाए
1: संत का दुखी अद बीज ते टूटे
0: संत का दुखी किते काज न पहुंचे
1: संत के दुखी को उदयान परमाई है
0: संत का दुखी उजड़ पाई है
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा
0: जो सास बिना मृतक की लोथा
1: संत के दुखी की जड़ किस ना ही
0: अपन बीजा पे ही खाए
1: संत के दुखी को अवर न रखन हार
0: नानक संत पावे ता लय उबार
1: संत का दुखी यूं बिल लाए
0: यूं जल बिन हून मछली तड़फड़ाए
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजा
0: जो पावक ईंधन नहीं त्रापे
1: संत का दुखी छुटे अकेला
0: जो बुआर तेरे खेत माहे दुहेला
1: संत का दुखी धर्म ते रहत
0: संत का दुखी सत मिथ्या कहत
1: कीर्तन दुखा तो रही पया
0: नानक जो तिस पावे सोई थिया
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
0: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
1: संत का दुखी सदा सहकाइये
0: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइये
1: संत के दुखी की पूजा न आसा
0: संत का दुखी उठ चले निराशा
1: संत के दुख न दृष्टे कोई
0: जैसा पावे तैसा कोई होए
1: पया कीर्तन मिटे कोई
0: नानक जाने सच्चा सोए
1: सब करते इसकी हो करने हार
0: सदा सदा तिसको नमस्कार
1: रबी उसत करो दिन रात
0: तिसे त्यागो सास गिरा
1: सब कछ वर्त तिसका किया
0: जैसा करे तैसा को थिया
1: अपना खेला करने हार
0: दूसर कौन कहे विचार
1: जिसनो कृपा करे तिस अपना नाम दे
0: वडपा की नानक जन से श्लोक
1: तज हो सियान पुसुर जन हो सिमर हो हर हर राई।
0: ਏਕ ਆਸ ਹਰ ਮਨ ਰੱਖੋ ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਪਰਮ ਪਉ ਜਾਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ
0: ਜੀਵਨ ਪਉ ਇਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ
1: ਜਿਸ ਕਹਿ ਦਈਐ ਰਹਿ ਅਗਾਹੇ
0: ਪਉਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ
1: ਮਾਰੈ ਰਾਖੈ ਏਕੋ ਆਪ
0: ਮਾਨੁਖ ਕੈ ਕਿਸਨਾ ਹੀ ਹਾਥ
1: ਜਿਸਕਾ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਸੁਖ ਹੋਏ
0: ਜਿਸਕਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੰਠ ਪਰੋਏ
1: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
0: ਨਾਨਕ ਬਿਘਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ
1: ਉਸਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ
0: ਕਰਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ
1: ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ
0: ਸਦਾ ਸਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ
1: ਨੈਨੋ ਬੇਖਾ ਪੁਰਖਾ ਰੰਗ
0: ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭ ਸੰਗ
1: ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ
0: ਮਿਟੇ ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ
1: ਹਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਨ ਹਰ ਕਥਾ
0: ਆਦਰ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮੱਥਾ
1: ਵਡ ਭਾਗੀ ਤੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਹੇ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਹੇ
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ
0: ਚੇਤਨ ਮੰਤਕ ਨੀ ਸੰਸਾਰ
1: ਮਨ ਤਨ ਮੁਖ ਬੋਲੇ ਹਰ ਮੁਖੀ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਨੋ ਤੇ ਸੁਖੀ
1: ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਪਛਾਣੈ
0: ਤੁਤ ਕੀ ਉਹ ਸੋਝੀ ਜਾਣੈ
1: ਨਾਮ ਸੰਗ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਨੈ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਆ
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਜੈ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਜਾਨੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ
0: ਸਰਬ ਰੋਗ ਤੇ ਹਰ ਜਨ ਰਹਿਤ
1: ਧਨ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਵਖਿਆਨ
0: ਰਸਤ ਮੈਂ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਣ
1: ਏਕ ਉਪਰ ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ
0: ਜਿਸ ਕੀ ਕਟੀਏ ਜਨ ਕੀ ਫਸ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਜਿਸ ਮਨ ਭੂਖ
0: ਨਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਗੈ ਦੁਖ
1: ਜਿਸ ਕੋ ਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਚਿਤੇ ਆਵੈ
0: ਸੋ ਸੰਤ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵੈ
1: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ
0: ਸੋ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕਿਸ ਤੇ ਡਰੈ
1: ਜੈਸਾ ਸਤ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਇਆ
0: ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਮੈਂ ਆਪ ਸਮਾਇਆ
1: ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੀਜਿਆ
0: ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਤ ਸਭ ਬੁਝਿਆ
1: ਜਬ ਦੇਖੋ ਪਰ ਸਭ ਸ਼ਮੂਲ
0: ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਕਮ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲ
1: ਮੈਂ ਕਿਸਚਨ ਮੈਂ ਨਹਿ ਕਿਸ਼ਮਰੈ
0: ਆਪਣੇ ਚਲਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ
1: ਆਪਨ ਜਾਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨਦ੍ਰਿਸ਼ਟ
0: ਅਜਾਕਾਰੀ ਤਾਰੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ
1: ਆਪੇ ਆਪ ਸਗਲ ਮਹਿ ਆਪ
0: ਅਨਕ ਜੁਗਤ ਰਚ ਥਾ ਬਿਉਥਾ
1: ਅਵਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਕਿਸ਼ਖੰਡ
0: ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ
1: ਲਖ ਭੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤਾਪ
0: ਆਪ ਜਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਜਾਪ
1: ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸੋ ਪਾਵੰਤ
0: ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਉਦਰੈ ਤਿਨ ਮੰਤ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ
1: ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਈ ਕਿਰਪਾਲ
0: ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਭਏ ਨਿਹਾਲ
1: ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਹੀ ਲਾਗੈ
0: ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਵਡ ਭਾਗੈ
1: ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੇ ਵਿਸਰਾਮ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖ ਕੋ ਉਤਮ ਕਰ ਮਾਨ
1: ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ
0: ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਸੈ ਹਰ ਸੰਗ
1: ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਏ
0: ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਪਛਾਣੇ ਸੋਏ
1: ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ
0: ਜੈਸਾ ਸਤ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ
1: ਜਿਸ ਦੀ ਉਪਜੇ ਤੇ ਸਮਾਹੀ ਸਮਾਏ
0: ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਉਹਨੂੰ ਬਣੇ

0: राष्ट्रपति
1: पूरे गुरु का सुन उपदेश
0: सा ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमर हो गोबिंद
0: मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस्त नित त्याग हो तरंग
0: संत जना के तुहर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करो
0: साथ संग अग्न सागर तरह
1: हर धन के भर ले हो भंडार
0: नानक गुरपुरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: साथ संग पर परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोबिंद अमृत रस पियो
1: चित चित्त हो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का यह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन
0: अमलीक लाल यह रतन
1: संत कमाप्त हो उदार
0: आप त्रैलो कै निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहत बाजय
0: सुन सुन अनंत करे प्रभु गाजय
1: रखे गोपाल महांत कह माथे
0: नानक उदरे तिन कै साथे
1: शरण जोग सुन सरनी आए
0: कर कृपा प्रभु आप मलाए
1: मिट गए बैर भय सब रीन
0: अमृत नाम साध संग लैन
1: सुप्रसन्न भय गुरुदेव
0: पूर्ण होई सेवक की सेवा
1: आज जाल विकार के रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
0: नानक नभी खेप हमारी
1: प्राप्ति उस्त करो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुख मनी सहज गोबिंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सहोत निधान
1: सब इच्छा ताकि पूर्ण होए
0: वरदान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब दे ऊच पाए स्थान
0: और न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रिद नव निद
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठी उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश
0: सबके मत सगल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टिता
1: ए फल तिस जन कै मुख भने
0: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
1: केहो निधान जपै मन कोए
0: सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोबिंद नाम धुन बाणी
0: समर्थ शास्त्र वेद बखानी
1: सकल मतांत केवल हर नाम
0: गोबिंद भगत कै मन बिश्राम
1: कोट अपराध साध संग मिटै
0: संत कृपा ते जमते छुटै
1: जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए
0: साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत
0: जिस जन आवे हर प्रभ चीत
1: जन्म मरणता का दुख निवार है
0: दुर्लभ दे तत्काल उधार है
1: निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी
0: एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से भय भरम
0: साध नाम निर्मलता के कर्म
1: सबसे ऊंच ताकी शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम सुखमनी।

उडुडरावा चाटे पाए देखे लोक शेकर जाए रोटियां कारण पूरे ताला पिछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपो निरंकार सचना।

पौड़ी बिन सतगुरु के ना पायो, बिन सतगुरु के ना पाया। सतगुरु विचाप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिल गए सदा मुक्त है जिन विच हो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेब की दिशन तो खी जिन सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सुखे तो धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

पौड़ी सच्चा साहेब एक तुझने सचो सच बरताया, जिस तू दहेज से मिले सच ता तिने सच कमाया, सतगुर मिल गए सच पाया, जिनके हृदय सच बसाया, मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया, विच दुनिया का है।

0: कुंभे बदा जल रहे जल बिल्कुल न होए ज्ञान का बदा मन रहे
1: और बिन ज्ञान न होए पड़ी पड़े होवे गुनगा पाऊं मी साधन मारिए।

0: धुवा पूरा तपे का सत गिर धुवा हो काजुग रथगन का कूड़ा गैर धुवा हो।
1: पहला शाम कहे सितंबर समय सच में अच्छा सच रहे।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पठानी अमलकिया
1: चारे वेद हो सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाव पद करनी।

सदगुरु वटहवारिया जित मेरे खसम संभालिया जिनका उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन नेत्री जगत ने हालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोहता।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया। सबको आखे पाए हुए प्राणा सटिए फिर पाया होर नानक तग न टुटे जे तग हो वै जो।
1: महला पहला नाय मनिए पत उपजे साला ही ससूत दरगे अंदर पाइये तग न टूट सपूत। महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक पवे निदारी तग न प्यारी तग न हथी तग न जेवा तग न अखी बे तग आया पे बते।

सुचे अगे रखियो कोई ना पिटो जाए सुचा है के जे ब्या लगा पंच लोक को हथी जाए सटिया किसे लगा दोख अण देवता पानी देवता बैसन तुर देवता लून पंजवा पाया किरत तो हो पाक पवित्र पापी सतन कटिया।

कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तन कम हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छह छव सके न कोई एक बार जंत में संभारा काल फास्ते ताहे उबारा

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
0: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
3: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ 604-349-1313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 604-349-1313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।

और जितना जगत इसनु कहेगा बहुत वड्डा मनुख है, क्योंकि चोटी का धनवान है। महाराज कहते हैं बड़े बड़े जो दीशे लोग तिनको व्यापे चिंता रो। बड़े रोगी मिलणगे, बड़े दुखी मिलणगे, परेशान मिलणगे, बेजार मिलणगे। गम छे बाशद, गम की है परमात्मा नु भूल जाना, और खुशी की है चीश्त शादी याद आंदा मन तेहा। उस ला इंतहा परमात्मा नु याद करना बस यही खुशी है, उनु भूल जाना बस यही दुख है। और ये कितना वड्डा दुख है, ये गुरु अर्जन देव जी महाराज दस देने परमेश्वर ते भूले आ व्यापन सबे रो। मैं फिर दोहरावा, असी परमात्मा नु गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, भुलाया है, भूल सकते। जिन्हों भूल गया रिश्ता टूटता है, जिस दी याद आवे रिश्ता जुड़ता है। कीर्तन एक बहाना है, कथा एक बहाना है, पाठ पूजा एक बहाना है, ये सारे धार्मिक मंदिर बहाने ने भी किसे बहाने नाल उसकी याद चल पाए। खुद चित आए महा आनंद, तेरी याद महा आनंद है, जिस विसरे सो मर जाए जी। और जो भूल जाए ओदिया सारिया ही खुशियां मर जांदियां, उसके सारे खेड़े मर जाते हैं, उसका सारा ही सुख मर जाता है। कि सुख मर गए, खेड़े मर गए, खुशियां मर गई, तो रहा कि फिर मनुख को मनुख तो एक जीवदी जागदी लाश होगा। और की है कई मनुख मुसाखी माप में देखना बस शरीर नू ढो रहे हैं, जिमें अपनी लाश आप पे ढोंद, कुछ भी नहीं। सुख मर गया, चैन मर गया, सुकून मर गया, शांति नहीं है, सुख नहीं है, रस नहीं है। रस ते मर चुके हैं, सुख ते मर चुके हैं, आनंद ते मर चुके हैं, सुकून मर गया है, शांति मर गई है, कुछ भी नहीं। ये तो अपनी लाश आप पे ढोंदा है। फर्क सिर्फ इतना है, किसे एक दिन चार मनुख मनुख दी अर्थी चुक के शमशान घाट दे पहुंचा देंदे ने, और ये अपनी अर्थी आप प्या घसीटता है। दिसदा है जीवदा जागदा पे सर्व सौसा दे चलन नूं जीवदा जागदा नहीं आखीदा। ये भी मैं अर्ज कर दिया, जिन्ने चिर तक उसकी याद न चले। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए जियो। चेते शक्ति, याद शक्ति, एक प्रबल शक्ति परिपूर्ण परमात्मा ने सानू दिती है। अगर वो याद का हिस्सा बने तो याद का हिस्सा कदों बनेगा, जब समझ का हिस्सा बने, वरना नहीं बनेगा। रोज लोग कीर्तन करते ने सुनते ने भूल जाते, कथा करते ने सुनते ने भूल जाते, पाठ करते ने गुरुद्वारे आते ने मंदिर आते ने भगवान से भूल जाते। जेड़े नहीं आते वह भी भुले, जेड़े आते ने उन्होंने भी भुले। कारण जिन्ने चिर तक समझ प्रभावित नहीं तो समझ दे नहीं आता, वो याद का हिस्सा नहीं बन सकता। तो मैं फिर अर्ज कर दिया, समझ आ जाता नहीं, समझ समझ के ये समझ आ जाती है, हे प्रभु मैं तेनो नहीं समझ सकता, पर मैं तेनो याद ते कर सकता। इस दे उत्ते एक छोटा जिहा उदाहरण मैनू चेते आया। तेथिन दी गल है, सागर तट ते एक पांच साल साढ़े चार साल का बच्चा जारो जार रो रहा है। उस वक्त का एक महान संत सुकरात टहलदा होया उत्थे आया, देखदा है बच्चा रो रहा है, कोल आए सिर ते हथ रखिया, आखे बेटे क्यों रो रहे हैं? उदे हाथ विच प्याला सी, प्याला। कहन लगा बाबा ये सागर जेड़ा ना मैं प्याले च भरना चाहना, ये सागर मेरे प्याले च आना चाहिदा है, पर करां कि मैं काफी देर दा थक गया, ये सागर मेरे प्याले च नहीं आऊंगा। कहिंदे ने बच्चे दी ए गल सुन के सुकरात दी भी चीख निकल गई, रोण लग पिया। बच्चा कहन लगा बाबा तू ते संत है, फकीर है, तू भी मेरी तरह रोन लगते, तेरा प्याला किथे है, तू क्यों रोन लगते, तेरा प्याला किथे है? बच्चे की समझ च भी आ गया, रोना समझ दे चाहता है, हासा समझ दे चाहता है। मनुख जन्म तो जो लेके आंदा है संसार विच हासा ते रोना, बाकी भाषा मां तो सीखता है, समाज तो सीखता है। कोई मनुख भाषा लेके नहीं आता, एक बंगाली

सौ साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन फॉर्मों की पेशेंस का टेस्ट मत।

होके ना सो ये आसार रात दिन के कूकने कवे के सुने पुकार। कबीर केंद्र में तो दिन रात बोली जाना कैसो कैसो कैसो मैं तो बोली बोली जाना किसी दिन के खेड बने किसी दिन के खेड बने। जगत दे चसी पहले वेखने फिर बोलते हैं प्रभु नाल ते पहले बोलना पेगा बोलने ही बोलने एक दिन दिखाई दे सामने खड़ा बिल्कुल निकट के। तो मैं अर्ज करना जैसे बोलन का फुरना पैदा होता है पवन नाभि नाल टकर उतो धुन उठती है उन्हों कहने परा धुन उठ के जद हिरदे तक पहुंचती है उन्हों कहने ने पसंती इतने उसनु शब्द मिलते हैं अल्फाज मिलते हिरदे तो उठ के वाक जद कंठ तक पहुंचता है इनू मधमा कहने ने वाक पूरा बन जाए जवान इसनु बयान कर देती है इनू बैकरी कहने परा बसंती मधमा बैखरी इनू चार बाणिया कहने परा ही बसंती बनती है बसंती ही मधमा बनती है और मधमा ही बैखरी बन पवन टकराई नाभी ने धुन पैदा हुई पर पहुंची हृदय तक अल्फाज मिल गए ही बन गई पूरे का पूरा वाक बन गया जो कहना है कम अंदर बड़ा तेजी ना लाता कंठ तक पहुंचे इनू कहने मधवा जवान ने बयान कर दिता इनू कहने बैखरी धुन बार आ गई जवान दे रहा जो नाभि तो उठी सी हिरदे से कंठ दे च पहुंच गए रसना दे रहा।

कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूर्ति अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निद पाई। जन्म तो ही मनुख खोजी बिरतियां लेके आया है, खोज रहे है जन्म दर जन्म, एक खोज रहे है लभ रहे है तलाश कर रहे है। खोज खोज के जो मिले है उस तो तृप्ति नहीं, तृप्ति किवें होनी है इसका कोई पता भी नहीं। धार्मिक चिंतक ते ऐसा कहिंदे ने कि मनुख तृप्ति दी ही तलाश दे चाहे, और तृप्ति तो बिना इसनु होर कुछ भी नहीं चाहिदा। रजेवा चाहिदा है, तृप्ति चाहिदी है, और रजे होए नु ही राजा कहिंदे ने। ए राजा होना चाहिदा है, ए राजा बनना चाहिदा है, ए महाराजा बनना चाहिदा है। खोज है, तलाश है महाराजा होण दी, राजा होण दी। खोज दे अज तक जो मनुख ने आधार बनाए ने वो है जमीन, पहाड़, सागर ते आसमान। अनंत काल तो पीढ़ी दर पीढ़ी, जन्म दर जन्म मनुख धरती दी गोद विचों अन्न कढ़ रहे है, धन कढ़ रहे है, और लंबे समय तो इस दी कोख देचों बहुत कुछ मनुख प्राप्त कर रहे है, प्राप्त करदा आया है। पर जमीन इसनु राजा नहीं बना सकी, महाराजा नहीं बना सकी। भावे जमीन देते रहन वाले जमीन मल के राजा होण दा दावा कर दे रहे, महाराजा होण दा ढंडोरा पिट दे रहे, पर किथे ओ राजे सन। कहिंदे ने सिकंदर ने अंतिम समय अपने साथियां नु कहा सी, कफन चो मेरे हथ बाहर ही कढ़ने, ताकि जगत नु पता चले थोड़े हथ ही खाली नहीं, मेरे हथ भी खाली ने। तुसी ही सिर्फ खाली नहीं लौट दे ते खाली रहंदे, मैं भी खाली रहा और खाली वापस हो रहा। नहीं भर सकया, नहीं तृप्त हो सकया, नहीं राजा बन सकया, नहीं महाराजा बन सकया। ए गल वखरी है कि सदियां तो मनुख राजा महाराजा दा लेबल अपने उपर लांदे रहे ने, ए राजा है, ए महाराजा है, ए बादशाह है, पर सीने चीर के देखिए सिवाय कंगालता तो होर कुछ नहीं, सिवाय भुखमरी तो होर कुछ भी नहीं। तो जमीन मनुख दी झोली नहीं भर सकी, राजा नहीं बना सकी। भावे जमीना ते रहन वाले, धरती ते रहन वाले राजा महाराजा होण दा दावा करदे रहे। फिर मनुख दियां निगाहां पहाड़ां ते चलियां गईयां। इसने पहाड़ां दे सीने चीरे बहुत कुछ लभया, लोहा लभया, तांबा लभया, कोयला लभया, और इसे ही पहाड़ां दी कुख दे चों इसनु सोना लभया, चांदी लभया, हीरे लभे, तरह तरह दे रतन लभे। इसने अपने घर भड़े, इसने अपना तन सोने दे गहनिया नाल सजाया संवारिया। इसने हीरे अपने ताज दे जड़त कीते, और इसने लोहे नू, इसने तांबे नू जस्त, इस तरह दी होर मैदनियात नू अपनी जरूरी कम्मा दे चलाया। लेकिन फिर भी कंगाल दा कंगाल रह गया। धरती दे इतने वड्डे पहाड़ एक छोटे जिया मनुख नू रजा नहीं सके, त्रिपत नहीं कर सके। फिर मनुख दी निगाहां सागर वल दौड़िया, और उसने सागर दे पानी नू छाणिया, चप्पे चप्पे नू छाणिया। बड़ा कुछ इसनू सागर तो भी मिलिया,
और मिल रहे हैं, लेकिन झोली फिर भी खाली, फिर भी ये तृप्त नहीं हो सकया, फिर भी ते अपने आप नु कहिंदा ते रहा मैं राजा मैं महाराजा, पर नहीं, तीन हिस्से पानी है, एक हिस्सा धरती है, इतना वड्डा सागर भी मनुख नु राजा नहीं बना सकया। निगाहां आसमान ते चलिया गईया, चंद्रमा ते और ग्रह नक्षत्रां ते, शायद इत्थों कुछ लभे और मेरी झोली भरे, लेकिन चंद्रमा तो भी मनुख मुट्ठी भर रेत लेके ही वापस आया है, झोली खाली है, निगाहां और अगां तो अगां जा रही हैं ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी दा फरमान है, ए बंदे जे तेनू धरती तृप्त नहीं कर सकी, तेनू पहाड़ नहीं रजा सके, तेरी प्यास सागर नहीं बुझा सके, और ग्रह नक्षत्र भी तेनू महाराजा नहीं बना सके, तो कम से कम तू इस अनुभव तो लाभ उठा, बार जितनी भी खोज करेगा तेरी लोड़ा दी पूर्ति होवेगी, तू राजा नहीं हो सकेगा, महाराजा नहीं हो सकेगा, फिर किथे खोज करिए। तो सतगुरु दी वाणी कहंदी है, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निंद पाई। भगत कबीर भी फरमान करदे ने, बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माए, ए जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी नाए। ए बंदे जमीन ते तू खोजी, पहाड़ सागर आसमान ते तू खोजे है, पर हुण अपने दिल दी खोज कर, अपने मन दिच जाती मार, पहाड़ां दी खोज लई बार मुखी होना पैंदा है, धरती दा सीना चीरन लई बार मुखी होना पैंदा है, सागर दी कुख दे चों मोती कढ़न लई बार मुखी होना पैंदा है, पर अपने ही जीवन दे मन दे अंदर जात मार के रब्बी खजाना कढ़ना, इदे लई अंतरमुखी होना पैंदा है, ध्यान नु अंतरमुखी करना है, जो बाहर जा रहा सी उनु अंदर लेना है। बंदे खोज देर हर रोज, ना फिर परेशानी ना है, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निंद पाई। मन एक बहुत वड्डा महल है, मन एक बहुत वड्डी भूमि है, और मन एक बहुत वड्डा पहाड़ है, मन एक बहुत वड्डा सागर है। शायद इसे वास्ते भगत पीपा जी कहंदे ने, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवे परम तत् है, सतगुर होए लखावे। जो तू ब्रह्मंड दे खोजदा रहे हैं, इस तरह दी खोज अपने अंदर भी कर सकदा है, फर्क सिर्फ इतना है, ब्रह्मंड दी खोज कर करके पदार्थ तेरे हाथ लगे ने, पर जे तू पिंड दी खोज कीती तो परमात्मा तेरे हाथ लगेगा। सागर दे चों तेनू मोती मिले ने, पर मन दे सागर दे चों तेनू ज्ञान मिलेगा, पहाड़ां दे चों तेनू धातुआं मिलियां ने, पर दिल दी खोज करदियां करदियां तेनू शांति सकून मिलेगा, चैन मिलेगा, आनंद मिलेगा। जमीन दे चों तेनू अन्न मिलिया, धन मिलिया, पर मन दे चों तेनू तृप्ति मिलेगी, रजेवा मिलेगा, तू राजा बन जाएगा, महाराजा बन जाएगा। चंद्रमा तो तू मुट्ठी भर रेत ले आया है, पर जे थोड़ा जिया अंदर जाती मार, मन दे चंद्रमा दे चों तेनू ओ अदुती खजाने लबन गए, कि तू अनंत काल तक माला माल हो जाएगा, सदीवी माला माल,
ਸਦੀਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਖੋਜ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਦੌਲਤ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੋ ਕਵਿਤਾ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਵੀ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹਾ ਕੋਣੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਲੋਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਚਿੰਤਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮਨ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਥਾ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਚ ਰਾਮ ਹੈ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਥਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਕੰਗਾਲਤਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦਰਅਸਲ ਪੱਛਮ ਤੇ ਪੂਰਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ ਪਾਗਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਛਮ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਗਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪਾਗਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕੋਈ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪਰਮ ਆਨੰਦਿਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪਰਮ ਸੁਖ ਚੈਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੋ ਇੱਕ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੋਜ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਪੱਛਮ ਦਾ ਮਨੋਚਿੰਤਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਗਹਿਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਭ ਹੀ ਲੋਭ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ ਹੀ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਕਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜੇ ਐਸਾ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਮਾਰੀਏ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਇਹੀ ਫੁਰਨੇ ਪੈ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਨੇ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਨੇ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਹੈ ਥੱਲੇ ਤੇ ਸਕੂਨ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਠਹਿਰਾਓ ਹੈ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ ਸਾਗਰ ਦੀ ਉਛਲੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਤੂਫਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਉਛਲੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਉਛਲੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਉਛਲੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਹੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਅਤ ਨੀਝਰ ਬਾਜੇ ਕਾਇਆ ਡੂਬੇ ਕੇਸਵ ਏ ਕੇਸੋ ਏ ਪ੍ਰਭੂ ਬੜੀਆਂ ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ
तू मेहर कर, तू बख्शिश कर, मैनू बचा। तो सागर दी उछली हुई अवस्था नू तूफान कहंदे ने। मन दी उछली हुई अवस्था ही लोभ है, मन दी उछली हुई अवस्था ही अहंकार है, ते काम है। ऊपर ऊपर कोई देखेगा, इस उछली अवस्था नू देखेगा तो सिवाय काम, सिवाय लोभ, ते सिवाय अहंकार तो और कुछ प्राप्त नहीं होना। तो पश्चिम दा मनोचिंतक ये कहिंदा रहा कि मन दी ते सिवाय काम तो और कुछ भी नहीं, सिवाय अहंकार तो और कुछ नहीं। पागल बंदियां नू आधार बना के मन दी खोज कीती जांदी रही है। पागल क्यों हो जांदे ने, तवाजन डावा डोल क्यों हो जांदा है, ये अपना संतुलन क्यों खो बैठते ने। अक्सर काम दी पूर्ति ना होवे ते क्रोध, लोभ दी पूर्ति ना होवे ते क्रोध, और अहंकार दी पूर्ति ना होवे ते क्रोध, ते असीम क्रोध संतुलन खो देंदा है, असीम क्रोध तवाजन डावा डोल कर देंदा है, मनुख नू पागल बना देंदा है। हां जिस तो किधरे काम दी पूर्ति होवे, लोभ दी पूर्ति होवे, अहंकार दी पूर्ति होवे, वो प्यारा लगन लग पैंदा है, उसते मोह आ जांदा है। पर कोई भी हमेशा दी पूर्ति नहीं कर सकता, ये पूर्ति वक्ती होंदी है, आरजी होंदी है। इस वास्ते मोह छिन बंगर हो जांदा है, प्रेम टूट जांदा है। रिश्तियां दे च रोज दराड़ा आउंदियां दिखाई देंदियां ने, मित्रता दुश्मनी दे च बदल जांदी है, भाईचारा खून खराबे च बदल जांदा है, पति पत्नी दे संबंध कल कलेश ते खड़े हो जांदे ने। ऐसा क्यों हर रोज और हर वक्त छिन छिन बंदे दी हंकार दी पूर्ति कोई मनुख हर वक्त नहीं कर सकता, हर वक्त लोभ दी पूर्ति नहीं कीती जा सकती, और कोई भी हर वक्त मनुख दी वासना नु शांत नहीं कर सकता। तो जिथे इनकार, जिथे अतृप्ति, उथे क्रोध। यही असीम क्रोध अगां चल के पागलपन दी शक्ल अख्तियार कर जांदा है। तो पागलां नू आधार बना के फ्राइड ते पश्चिम दे होर मनोचिंतक खोज करदे रहे, ते ऐलानिया उन्होंने कह दिता मन काम है, मन लोभ है, मन अहंकार है और कुछ भी नहीं। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी तो पूछी है, तो धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कहने मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछान, तू ते जोत स्वरूप है, तू ते परम प्रकाश है, तू ते परम आनंद है, तू ते परम खेड़ा है। देखदे हां सी सिपियां शंख लहरां सागर दे कंडे ते ने, उपरी सतह ते ने, गहराई दे च मोती पए ने, उपर नहीं मोती मिलते, किनारे ते नहीं मोती मिलते। तो ज्ञान प्रेम समदृष्टि निर्वैरता निर्भयता परम आनंद परम समाधि ये गहराई दे च है। तो गहरे उतरना ही मन दी खोज है। और साहिब केंद ने जो गहरा चला गया मन दी दुनिया च खोज दिया उसनु नौ खजानिया दी प्राप्ति हो जाएगी, नौ दा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निद पाई। जिस दिन परमात्मा दा नाम प्राप्त होंदा है, नाम दी दौलत दे नाल ए राजा बन जांदा है, ए महाराजा बन जांदा है। भाई नंद लाल कहिंदे ने गदाए कुए तुरा मेले बादशाही नेस्त, हवाए सल्तनतो वजाओ के कज कुलाही नेस्त। हे गुरु गोविंद सिंह,
तेरी गली चो जद कोई भूल के भी लंघदा है ओ दो जहाना दी बादशाहत नू ठोकर मार देंदा है, माला माल हो जांदा है, महाराजा बन जांदा है, महाराजियां दा महाराजा बन जांदा है, त्रिपत हो जांदा है। इसे नू ही गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने ढंग नाल बयान कीता है। आप कहंदे ने कि कोई मलकियत बारों इतनी जुटा लवे जितना के सागर दा पानी है, जमीन नालों तीन हिस्से, सागर ज्यादा है, पानी ज्यादा है, धरती घट है, इतना वड्डा पसरिया होया फैलिया होया ए सागर, और कोई बादशाह होवे सुल्तान होवे इतना वड्डा जितना के पसरिया होया पानी, समुंद सहा सुल्तान, इसदे घर दौलत कितनी होवे, सोना चांदी कितना होवे, इसदे घर देच हीरे पन्ने रतन जवाहर लाल कितने होवन, गिरहा सेती माल धन, जमीन दे उते जितने पहाड़ ने इतना इसदे घर देच सोना होवे चांदी होवे पन्ने ते रतन होवन, कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मनो न विसरे, ओ कीड़ी जिस दे मन विच प्रभु भुलिया नहीं, जो समाधि लीन हो गई है, इतना वड्डा बादशाह उस कीड़ी दे समान भी नहीं है, उस दे पैरां दी खाक भी नहीं है, कीड़ी गिनती मिनती च नहीं आउंदी, कई दफा दृष्टि च भी नहीं आउंदी, जिस बंदे दी कोई जात नहीं, पात नहीं, कुल नहीं, जिस बंदे दी कोई परिवारिक ताकत नहीं, सामाजिक शक्ति नहीं, आर्थिक ताकत नहीं, कुछ भी नहीं, हर पासे पछड़े होया है, और किसी दी निगाह भी उसते नहीं पैंदी, बिल्कुल कीड़ी दी थल्ले, बिल्कुल सारे पैरां दे थल्ले, पर सतगुरु कहंदे जे उसके हिरदे च किधरे परमात्मा का नाम वस जाए, वो किधरे अंतरमुखी हो जाए, तो इतना वड्डा बादशाह भी उसके पैरां दी खाक नहीं, क्योंकि मलकियत जता के भी जो अंदरों कंगाल है उन्हों महाराजा कहना सिर्फ इतना ही है, जिवें उपर लेबल लगे होया अंदर तो कुछ भी नहीं है, खाली है। तो जैसे कोई मन दे प्रवेश करता है, गीत मिलते ने, संगीत मिलता है, दर्शन मिलता है, फिलसफा मिलता है, पर यह सब कुछ है थोड़ी जिया गहराई दे है, होर अगे जाना है, सत्संग दा यही लाभ है, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे कोल बैठ के उसनु सुनन दा यही लाभ है कि मनुख होर गहरा जा सके, होर गहरा जा सके, घबराहट आउंदी है, गहराई दे उतर दे हैं। जब थोड़ा कुछ प्राप्त हो जाता है, आशा ते बज दिए, शौक ते वद्दा है, पर हिम्मत साहस जुटाना औखा हो जाता है, होर गहरे जाइए, होर गहरे जाइए, कदी कदी कोई साहस जुटाता है, जप करता है और बाणी सुनता है, बहुत सुनता है, बहुत जप करता है, और जैसे अंतर्मुखी होके ध्यान नू होर गहराइयां दे चले जाता है, तो रिधियां ते सिधियां उसका स्वागत कर दिया ने। पहले गीत संगीत मिलिया, दर्शन फिलसफा ए मिलिया, हुण रिधियां मिल गईयां, हुण सिधियां मिल गईयां, हुण ए सिद्ध हो गए, ए सिद्ध पुरश हो गए, इहदे बोलां विच बरकत आ गई है, इहदे हत्थां विच शक्ति आ गई है, इहदे कदमां विच क्रांति आ गई है, जिस पासे इसदे कदम जाणगे अपने नक्श चैन छोड़नगे, अपने पैरां दे चिन्ह छोड़नगे, लोगां लई मार्ग बनेगा, इसदे हथ जिस पासे पसरनगे महान उसारू कम उत्पन्न होणगे, उपज होणगे, और इसदी दृष्टि जिसते जाएगी अमृत बरसाएगी, इहदे बोलां दे चों महान उसारू बोल जो जीवन नूं बुलंदियां ते लै जान
ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਸਤਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਲ ਮਾਮੂਲੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੱਥ ਹੁਣ ਮਾਮੂਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਪੈਰ ਹੁਣ ਮਾਮੂਲੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਵਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਰ ਆਮ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਸ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਆਮ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣੀਏ, ਇਹ ਬੋਲ ਆਮ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਬੋਲ ਨੇ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ, ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲੋਕ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿੱਧ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਡੁਬਕੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗਹਿਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਪ। ਤੋ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਦ ਤੈਨਾਦ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ। ਮਹਾਨ ਬਿਸਮਾਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮ ਅਸ਼ਚਰਜਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਉਸਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਫੁਰਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਭਜ ਦੌੜ ਮਿਟ ਗਈ। ਉਸ ਨੇਚਲ ਬਿੰਦੂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਇਸ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਐਸੀ ਸਮਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਕਦੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਐਸਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਜੋ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਐਸੀ ਬੁਲੰਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਧੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਧਾਨ ਹੀ ਸਮਾਧਾਨ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਮਾਧੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਹੈ, ਰਾਮ ਕਿੱਥੇ? ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਝਲਕ ਲੋਭ ਦੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਧੀ ਹੀ ਸਮਾਧੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੈਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕਬੂਲ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਹਾਵ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਤੈਰ ਸਕੇਗਾ, ਆਖਿਰ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਥੱਕੇਗਾ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਜਿੱਧਰ ਰੱਬ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਵਹਿਣ ਤੇ ਦਾਉ ਗਉ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਧੀ ਹੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਖੋਜਦਿਆਂ ਖੋਜਦਿਆਂ ਮਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਜੀਵਨ ਧਨ ਧਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਯੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਨ ਭਾਇਓ।

द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उग्र सैन खोरा अभय भगतें जन दियो।

0: मनुख ते मर्यादा ले नहीं है, नहीं ते फिर सिर्फ मर्यादा ही बच जाएगी, मनुख ते खत्म हो जाएंगे तो उस मर्यादा की कौन पालना करेगा। मर्यादा है मनुख नू जिंदा रखन लई, मनुख नू सुखी देन लई, मनुख नू इंसाफ देन लई, मनुख नू न्याय देन लई। पर जिथे ए मर्यादा मनुख नू ही खा जाए, मनुख नू ही नष्ट करे, उत्थे श्री कृष्ण ने कहा हुण मनुख नू बचाओ मर्यादा नू नहीं। कुछ सियाणा युग आया, गुरु नानक दी दुनिया ए कॉलेज दे प्रोफेसर ने, मनुखता बहुत सियाणी हो गई, ए सदी बहुत सियाणी सदी है, ए युग बड़ा सियाणा युग है। पुरानियां गल्लां नहीं ने, थोड़ा जिहा तुसीं पिछे चले जाओ, अपने दादे परदादियां नूं देखो, क्या इतने विकसित सन, क्या उतनी उन्हां कोल जानकारी सी, क्या इतनी उन्हां कोल सूझ बूझ सी। ज्ञान वधे है, सियाणप वधी है, तो सियाणे नूं पणाण दा ढंग होर आउंदा है, इयाणे नूं पणाण दा ढंग होर आउंदा है। इयाणे दीआं किताबां होर आउंदीआं ने, सियाणे दीआं किताबां होर आउंदीआं ने, इयाणियां दे उस्ताद होर आउंदे ने, सियाणियां दे उस्ताद होर आउंदे ने। इयाणियां नूं भी पढ़ाया जांदा है, सियाणियां नूं भी पढ़ाया जांदा है। बड़ा सियाणा युग गुरु नानक दे सामने सी, बड़े धर्म ग्रंथ विकसित हो चुके सन, मनुख बड़ा ज्ञानी विज्ञानी बनिया, बहुत पक्की इस दे कुल सूझ ते समझ, नवी तो नवीआं खबरां ए लेके आ रहा है मनुख अज दा। और जितनी सियाणप वधी कुदरती गल है, उतना अहंकार वधना सी। तो ए युग अहंकारी युग है। बहुत सुंदर वाक गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच लिखे हुए ने कि नारद नाचे कल का भाव, जति सती कहे राखे भाव। मन नारद बन गया है, ऋषियां दे चों नारद नू बड़ा सियाणा मनिया गया है, बहुत सियाणा। हर ऋषियां दी महफिल विच उसका सन्मान, टुटियां नू जोड़ देना उदे कुल सियाणप है, और दो सियाणियां तोड़ के रख देना ए भी उदे कुल सियाणप है। बड़ी वड्डी सियाणप है जोड़ तोड़ दी, और जोड़ तोड़ ओही कर सकदा है जिदे कुल जोड़न दी भी समझ होवे, तोड़न दी भी समझ होवे। नारद सारे ऋषियां दे सन्मानत, हर थां ते प्रगट और हर तरह दी खबर रखण वाला। ए युग सिर्फ हुण अपने घर दी खबर नहीं, जमीन दे चप्पे चप्पे दी खबर रखण वाला है। अज मनुख सारी दुनिया दी खबरां अखबार विच पढ़दा है, टेलीविजन ते देखदा है, रेडियो राही सुनदा है। बड़ा सियाणा ए युग है। गुरु नानक देव जी महाराज दे समय भी लोकी दूर दराज तक जान लग पे सन, सतगुरु आप भी नवखंड पृथ्वी दा जो है भ्रमण करके देश दे वापस लौटे सन। बड़ा भ्रमण, बड़ा भ्रमण, बर्मा विच गए, तिब्बत भूटान गए, फिर रशिया दा इलाका, अफगानिस्तान, ईरान ते सारा अरब। बड़ा भ्रमण गुरु नानक दा। युग बड़ा सियाणा हो गया, इसनू पढ़ाना सी, इसनू समझाना सी, तो समझान लगिया कुदरती गल है, इसदे अहंकार नू पहले मिटाना सी, इसदे अहंकार नू पहले दूर करना सी। इसे ही कलयुग विच महात्मा बुद्ध ने भी देखिया, सियाणा मनुख जरूर हो गया है, अहंकारी है, तो उसने बनाए भिक्षु, भिखारी, भिक्षु। दरअसल जद भिक्षा ही लेनी है तो मान तान वाली ते कोई गल है नहीं, अहंकार दी कोई गल ते हो ही ना। आखिर एक भिक्षु, एक मांगत किस चीज का अहंकार कर सकता है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੰਕਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਿਕਸ਼ੂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਰੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਪਾਏਗਾ? ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਿਲਾਏਗਾ? ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਭਿਕਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੰਬੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੁਣਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੋ ਬੌਧ ਧਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰੇ? ਕੌਣ ਭਿਕਸ਼ਾ ਦੇਵੇ? ਔਰ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੰਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸਨ। ਤੋ ਆਪਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ, ਬੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਬਦ, ਬੜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਿਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ। ਜੋ ਆਖੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਹੰਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂਲ ਰੋਗ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਮੂਲ ਰੋਗ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ, ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਦੀਨਾ ਕਾਮ ਰੋਗ, ਮੈਂ ਗਲ ਬਸ ਕੀਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਅਹੰਗ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਹੰਕਾਰ। ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਔਸਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲੱਭੀ, ਵੀ ਪ੍ਰਥਮ ਤੋਂ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਆਖਿਰ ਅਹੰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਆਖੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੱਚ ਬਾਰੇ, ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੋ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਜਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੋ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਟਿੱਕਣ ਦੇ ਆਸਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤਵਿਕ ਇੱਕ ਮਨਮਰਤਾ ਦੀ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸਾਰੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਜੋ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ मिठास, विनिम्रता, निर्माणता। निर्माण मनुख दे बोलां दे सख्ती नहीं आउंदी। देखदे हां हत्थां दे छड़ियां ने, पैरां दे छड़ियां ने, पिंजर है। प्रभु ने जबान दे च हड्डी नहीं बनाई, कन्ना दे च भी बारीक हड्डियां ने, नक दे च भी हड्डी है, मुंह मथे ते भी हड्डियां ने, बाहां दे च भी हड्डियां ने, पैरां दे च भी हड्डियां ने, पर जिस जबान ने बोलना है उस दे च हड्डी नहीं। हड्डी सख्त होंदी है, इस गल दा प्रतीक है ए जबान तेरी बोल तो, तेरे बचना तो, तेरे बोलां दे सख्ती नहीं चाहिदी। जबान तो जो बोल निकलन वो सख्त नहीं चाहिदे। जितनी जबान कोमल है इतने ही बोल कोमल चाहिदे ने। जितनी जबान जो है लचकदार है इतने ही बोल लचकदार चाहिदे ने। जिस तरह जबान ही सारे रस मान दी है, इस तरह बोल भी रस देने वाले होन, स्वाद देने वाले होन, फिक्के ना होन। नानक फिक्के बोलिए तन मन फिक्का होए। पारा जी ते कहंदे ने जो फिक्का बोल रहा है ते सख्त बोल रहा है सारी जिंदगी उसकी फिक्की हो जाती है। ते फिक्का कौन बोलदा है जो सख्त सुभाव दा हो गया, ते सख्त सुभाव दा कौन हो गया जो अहंकारी है। अहंकार सारे औगुणा दी बुनियाद है, विनिम्रता सारे गुणा दा आधार है। और जिथे निर्माणता आ जाती है, मैं कुछ नहीं जानदा, मैनू कुछ भी नहीं पता, और हाथ जोड़ के हर एक दे अगों जो है खड़ा है, ऐसा वेख के अणडिठ करन वाला निर्माण मनुख मिठास नाल भर जांदा है, रस नाल भर जांदा है, उहदे रोम रोम दे स्वाद आउंदा है, उहदे बोलां दे कोमलता, उहदी दृष्टि दे अमृत। सतगुर ने ये पावन पवित्र वाक दिता, सिख तू कबूल कर कि मैं कुछ भी नहीं जानदा और मैं जानना चाहना। पहले जब कोई ऐसा कबूल करता है कि मैं सीखना चाहना और मैं कुछ भी नहीं जानदा, तो वो चल पे है, चल पे है, साधक हो गया। पर सब कुछ जान लिया, सब कुछ जान लिया, सब कुछ दा पता चल गया, ते फिर भी कहिंदा है मैं कुछ भी नहीं जानदा, मैं कुछ भी नहीं जानदा, ए महान हो गया, परमात्मा वर्गा हो गया। इस वास्ते गुरु सिख, सिख गुरु है, नानक भेद ना भाई। वो सिख परमात्मा जैसा हो जांदा है, ईश्वर जैसा हो जांदा है। जैसे ईश्वर अपनी समर्था, अपनी कला ते अपने गुणा दा ढंडोरा नहीं पिटदा, ते कोई उसनों हंकार नहीं। अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। वो अमान है, उदे च कोई मान नहीं, उस प्रभु दे च भावे गुणा दा खजाना है। इसी तरीके नाल जद कोई सिख सिख के गुणा दा खजाना बन जांदा है, ते फिर भी कहंदा है मैं कुछ भी नहीं जानदा, तो वो भी परमात्मा वर्गा हो जांदा है, ईश्वर वर्गा हो जांदा है। सतगुर इस तरह दी दात हर एक दी झोली च पान।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जा कॉल किरण @604581190।

0: रामचंद्र जी राज के अंदर धन गुरुनाथ देव जी महाराज की बड़ी कीमती पंक्ति है, पुरख में नार, नार में पुरखा, कौन विधे विध जाने। धन गुरु नानक देव जी महाराज इथों से ही जापता है कि आप जिथे एक महान आत्म ज्ञानी ने, ब्रह्म ज्ञानी ने, गुरुदेव ने, वसत के अवतारी पुरुष ने, उत्थे वो शरीर शास्त्री भी ने। अतिन ने पुरख में नार, नार में पुरखा, कौन विधे विध जाने। विधाते दी इस विधि नू कौन जानदा है कि जो पुरख का शरीर है उसके अंदर नारी दे कण भी है और जो नारी का शरीर है उसके अंदर पुरुष दे कण भी है। कोई भी जो शरीर है मां बाप तो आया है तो उसके अंदर मां भी अंश भी है, पिता भी अंश भी है, पुरुष दे कण भी हैं और नारी दे कण भी है। कहने ने पुरुष इस वास्ते पुरुष हो सके है कि उसके अंदर पुरुष के कण से पूरे ने, नारी अधूरी है, अर्ध हम, और नारी स्त्री मैरिज इस वास्ते स्त्री हो सकी है कि उसके अंदर नारी के कण से पूरे ने, पुरुष अधूरा है, अर्ध हम। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस गल से तस्लिम किया कि बाहर की यह नारी पुरुष के अंदर दे हर अंग नूं संपूर्ण करती है, पर पुरुष का अहंकार प्रबल सी, उसने यह गल अंदरों से तस्लीम की, बाहरों आखण दे संकोच किया कि पुरुष भी अर्ध अंग है, क्योंकि पुरुष के अंदर नारी अधूरी है, नारी के अंदर पुरुष अधूरा है, पुरुष करके नारी अर्ध अंग है और नारी करके पुरुष अर्ध अंग, अर्ध अंग अधूरा अंग। तो ये दो अंग मिलके संपूर्ण हो, ये अर्ध अंग बाल की कशिश पैदा कर गया, पुरुष के अंदर नारी की कशिश, नारी के अंदर पुरुष की कशिश। गुरु नानक देव जी महाराज का कहना कि वो जो अर्ध अंग है वो संपूर्ण होना चाहिए। इस अर्ध अंग की जड़ी संपूर्णता है, ये पशुओं की तरह ना हो, मनुख आकर मनुख है, ये को सोचनी है, ये को विचार ने, तो इस समाजिक रकम नो धर्म के दायरे में चलाने की आज्ञा है, ताकि रिश्तों में पुख्तगी हो, रिश्तों में पक्याई हो, रिश्ते अटूट होवन, और जिस रिश्ते के विचोले आप धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बन जा, मोर गुरबाणी की लगे, और इसे तरीके प्राचीन ऋषि मुनि धर्म की मोर ला के इस अर्ग अंग की संपूर्णता करते सन, तो इसका नाम उन्होंने रखा कि विवाह। गुरमत यह नाम रखा गया है आनंद कार, खुशी का एक काम, क्योंकि अर्ग अंग संपूर्ण हो रहा है। ऐसी जेरी मर्यादा बनाइए परिपूर्ण परमात्मा ने आप बनाई, ईश्वर भी एक होंदा होया अनेक है, उसने मनुख नूं भी अनेक हिस्सों में वंडिया। जैसे कलगीधर पिता कहते ने अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। हे प्रभु तू एक होंदा होया अनेक है, ते अनेक होंदा होया एक है। उसने खास करके पुरुष नूं भी ते नारी नूं भी अनेकता विच वंड दिता है। जो पुरुष किसी का बच्चा है, लड़का है, वो किसी का भरा भी है और किसी का फिर पति बनता है, किसी का पिता है, किसी का दोस्त है, किसी का पड़ोसी है। एक पुरुष कितने रूप रखता है, एक भरा भी है, एक पति भी है, ये पुत्र भी है, ये पड़ोसी भी है, ये दोस्त भी है। इस तरह स्त्री भी एक होंदे होया अनेक है। जे किसी की बच्ची है, किसी की धी है, तो किसी की बहन भी है, किसी की बहन तो किसी की सहेली भी है, किसी की पड़ोसन भी है, और फिर किसी की पत्नी सारे रिश्तों में पकियाई होवे पवित्रता होवे इस वास्ते विचोला चाहिदा सी तो विचोला गुरु गुरु मोर लांदा है कि मनुख पुरुष भरा बने ते चंगा बने लोकी मान करन के भरा होवे ते ऐसा होवे ते पति बने ते आदर्शवादी और एक वाकई नमूना बने और ये पुत्र बने ते ऐसा के मां बाप फकर करन ये दोस्त बने ते ऐसा के दोस्त उससे मान करन और ये पति बने ते ऐसा कि पत्नी का मान सम्मान ते इज्जत आबरू बने उसकी खुशी बने हू बहु इसे तरीके नाल इतनी जिम्मेवारियां ने बच्ची दी बच्ची ऐसी बने कि मां बाप के हिरदे हमेशा याद करते रहन कि साडे घर का बिछड़िया होया फुल से पहले महक वंडी पेके घर दे हूं महक वंड रही है सौरे घर और मां बाप की खुशी बनी रहे महक फैल रही है खुशबू फैल रही है एक पत्नी बने आदर्शवादी एक बहन बने महान दया मान कर बहना मान कर सारे रिश्तों में पख्याई से पुख्तगी ये लाजमी है कि पत्नी होवे तो ऐसी कि सारिया ही खुशियों का सोमा बन जाए पति और पति मान कर तो इससे लाजमी है कि रिश्ते महानता आवे किसी महान नाल संबंध जोड़े और इन दो आत्माओं के संगम इन दो शरीर के संगम में कोई मदद चाहिए है जैसे परिपूर्ण परमात्मा की दुनिया की अस देखते हैं दोहां जोड़ने तीसरा चाहिए दो कागज जोड़ने ने गोंद चाहिए है दो कपड़िया जोड़ना है कोई धागा चाहिए दो इटा जोड़ना है तो बकायदा गारा सीमेंट इत्यादि चाहिए है दो लकड़ा नु जोड़ना है त्रे किल कुछ ना कुछ है चाहिए है दो दिला नु जोड़ना है इतने दो दिल जोड़ने हैं दो विचारा नु जोड़ना है दो ख्याल नु जोड़ना है तो कोई तो चाहिए है बस ये गुरु तीजा है जो दोहां नु इक करता है दोहां ते मोर लांदा है ते हुण मैं दो मिनट आपके होर लवां ते समाप्ति करा रिश्ते दुनिया में दो तरह के हैं खून के रिश्ते ख्यालों के रिश्ते विचारों के रिश्ते मन का रिश्ता जिहड़े खून के रिश्ते ने इन्हां दीआं प्रणालियां तीन ने नानके दादके सौरे वे खून का रिश्ता दादकिया नानकिया से फिर सौरिया पर नानके दादके ते सौरियां दे रिश्तियां नू जिथों जन्म मिलता है पति पत्नी तो ये रिश्ता खून का रिश्ता नहीं है बच्ची किसे घर की बच्चा किसे घर का खून तो एक नहीं है किस तरह किया जा सकता खून ये खून एक नहीं है तो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने भी नहीं मने सतगुरु की बाणी कहती है ये दिलां की सांझ है विचारां की सांझ एक जो दोए मूर्ति धन फिर कहिए सोरे महाराज कहते ने असि पति पत्नी उसनों कहने विचार एक हो गए ने मूर्तियां दो ख्याल एक हो गए ने मूर्तियां दो ने पर इतनी गल स्पष्ट है जिथे विचारां की सांझ हो जाए प्यार का जन्म उथे ही वरना नहीं जिथे विचारां की सांझ हो जाए प्यार उथे पैदा होता है और जिथे प्यार है उसते एतबार भी आंदा है एतबार भी मनुख का उसे नहीं जाता और जिथे एतबार है कहने सदाचार का वास्ता भी उसे ही है और जिथे सदाचार है करतार दिया सारिया बख्शिशा भी उसे करतार दिया सारिया न्यामता भी उसे ने आप सारे सियाने बैठे बच्ची बच्चे भी ए बिताने सियाने ने ये रिश्ता विचारा की सांझ का है ख्याल की सांझ का एक जो दोए मूर्ति ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਦਾਦਕੇ ਨਾ ਨਾਨਕੇ ਨਾ ਸੌ। ਇਹ ਜੋ ਤਿੰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਦਾਦਕੇ ਨਾਨਕੇ ਸੌਰੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੋਏ ਮੋਗ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਸੀਆਂ, ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਜੁੜੇ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਨ ਸਕਿਆ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਸੀਏ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਚਲੋ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਸੀਆਂ, ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ, ਧਨ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਜੋਤ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ, ਜੋਤ ਕੀ ਮਨ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ। ਤੋ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਣ ਤੀਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਗ ਬਣੀ ਰਹੇ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਮਹਿਕ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਹੈ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬੱਚੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣਨ, ਦੋਵੇਂ ਜੋ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਾਣ ਕਰਨ। ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਦੀ ਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਰਿਆਦਾ ਸੰਯੋਗ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਗੋਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਗਰਾਂਗੇ। ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਹੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਸਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 2992 152 Street, ਸਰੀ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 19 June ਤੋਂ 24 June ਤੱਕ। ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਚੈਰੀਜ ਲਵੋ 2.99 ਪਾਊਂਡ, 2 pound ਪਲੇਨ ਗੁੜ 2.98 ਨੂੰ, ਤਾਜ਼ਾ ਅਦਰਕ 98 cents ਨੂੰ ਪਾਊਂਡ, ਅਤੇ BC ਹੌਟ ਹਾਊਸ ਟੋਮੇਟੋਜ਼ 98 cents ਨੂੰ ਪਾਊਂਡ।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 AM Gurbani segment is brought to you in memory of Sardar Ajit Singh Bad and Sardarni Surinder Kaur Bad. 1550 Radio de utte Gurbani de kise vi program nu sponsor karna chahunde ho ta call karo 604-900-7790.
2: फैमिली केयर फार्मेसी
3: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
2: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
3: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
2: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
3: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
4: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
2: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
5: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ 604-349-1313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 604-349-1313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।
6: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GurdaleBaudGroup.com.